0: ज्ञान डी हर्षेंद्र कुमार धर्मस्थल
1: सुप्रिया हर्षेंद्र कुमार श्री क्षेत्र धर्मस्थल
0: केरण दिप्पले रेडियो निनाद 90.4 FM